0: अरे दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितने भी हुशार
1: अरे आसू दे की
0: अरे दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितने भी हुशार
1: अरमन

0: नमस्कार, मी प्रिया ओगले जोशी. आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा.
1: जानवालिया तू तड़पाया, लौट के फिर तू कदे ना आया, अखां दे नाल दिल नूं रुलाया, बड़ा सताया तू.

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: नमस्कार, श्रोते हो आपण ऐकताय स्नेहालयाचं लोकमाध्यम।

पूरा प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज अश्वपति गजपति भूपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री श्री श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आपण ऐकत आहात।